तो सज्जनों सुनो सहेलियों की कहानी। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, छह नहीं, हाँ, अरे अरे

उनको एहतरामन मैं सलाम पेश करता हूं, और जो इस कलाम को सुनते हुए इधर उधर घूम रहे हैं मैं उनसे इस शेर पर खास तौर चाहता हूँ तवज्जो दें।